माय तिया बिमगे फेंगनु दिरवालाशे अदि ए उडाय वेहुं हुट्टालाशे देम फेंगनु हिंदिज्जे अदि एवरें हलाकुए दिमगे खंतव्वे निमिज्जे अदि जूदियु फरबदागे मच्च ए नाकुल बीहि हम जहिज्जे अदि एंगेवे अनिया वेरी मीहुन्नं हलाकाई गेल्लुं हुट्टे।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम।
1: अस्सलाम अलैकुम।
0: जिनत वर बाजर हैं ना कहेंगे?
1: रमीज़ इस बाजर हैं ना हाल कहीं न
0: तो। अल्हम्दुलिल्लाह वर रंगल कहीं न तो दिन।
1: अल्हम्दुलिल्लाह वर गुण स्ट्रंगल। हुरी हाबे फिर रंगल का मैं उम्मीद करूँ हुरी हाबे फिर ना वर उफा वर दुआ का वर बाजर हैं ना कहें दे। और गुण में मैंने कहा आ दुआ का मैं कुर मतली आ दुआ हिम में फिशुनी आ उम्मीद का आ आजमा का एकीग आ हिवर का एकीग हुरी हाबे फिर मिस दोस्त फटवाए का मैं और गुण में उम्मीद करने
0: मेरे तारीख बैदर मेद की रबी आखिर माह के छब्बीस वन दिवस दिन मेहरिया मेदने अक्टूबर मस अक्टूबर माह मेद में हते हफ्ता नियम का दंड नियम के पूरी एक दिवस मेद में की बुद्ध दिवस दिन हितना के मेहर मेदने कोरिया हितना का तुम मेद में हतर वन दिवस
1: मौसम में सरीते दो हेगे गुतुगा हम आधा के दो हेगे गुतुगा दो वस फेशिज दें पर बार अनेक कैस में दानेंगे तो आहार के वस निमोमादि में अर्गुन में नम मिहार में देवनी हम बाला बलाती बम मिहार वस मियो PSM ya.

0: हांगार अंगार दो मिंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे देगड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो हकेरे मिंदम बार गड़ तिरी हूं हांगार
1: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
2: एहारा मिहारु के फिल्म तो के हिग्गे मंजर तका लवतो के तेरिया फीना लमा
3: ए बलम हीरा लतीफा कौन सा का गोस्त तो सी अन्ननी है
4: बोले

0: ती मेसेज हुए ए मम्मी शन गुलाम विस चेने गुलावला
1: एकम कुंका मितवाणी गुळे किन कुंका में हेवाणी
0: एकम को हिं गोतिं हे बोइत दिन मिहारु नेतेन नो हिं गोते ती गुलावला ती काकु कंगेनी विस गुळागे गुलाला

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं